नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के

0: वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्झवर। 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्तिगीतांचा कार्यक्रम अर्चना।

0: परिसर कार्यक्रम आपण ऐकलात प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन ए आर या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. आता थोड्याच वेळात संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. अथ वार्ताः. वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां 15 भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः. वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः. गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता. अस्यां दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः दिवंगताः. दुर्घटनायां जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम

0: प्रियंका ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर 83 डॉलर

0: 30 सेंट प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: चार दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौष्ठवतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौष्ठवतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी

0: बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: as a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables

0: बोला बोला
1: अन्न गाढ़ाव काय मानूस काय अन्न गाढ़ाव काय और जाईल तकड़ो बम करते

0: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून प्रसारित करीत आहोत हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. श्रोतेहो नमस्कार. HCG कॅन्सर हॉस्पिटल ऑटोमोटिव्ह चौक नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपण बातचीत करीत आहोत थायरॉईड कॅन्सर याबद्दल आणि आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंग. आपले प्रश्न आपल्या शंका आपण डॉक्टर भास्कर सिंग यांना विचारू शकता आणि कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 256 0101 आणि 2529266. आपण जर नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल किंवा आपल्या मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712-0712 हा नागपूरचा STD कोड नक्की डायल करा. श्रोताओ आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल ऑटोमोटिव स्क्वेयर नागपुर हेलो डॉक्टर ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे थायराइड कैंसर के बारे में. हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंह. आप अपने सवाल अपनी शंकाएं डॉक्टर भास्कर सिंह से पूछिए और हमारे इस प्रोग्राम में सहभागी होइए. हमारा प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर और हमारे नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266. नागपुर का STD कोड 0712 जरूर डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं. डॉक्टर भास्कर सिंह नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में. आज हम थायराइड कैंसर के बारे में बातचीत करेंगे. लेकिन डॉक्टर हम पहले तो जानना चाहेंगे कि थायराइड होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से BP या शुगर आजकल कॉमनली देखा जाता है उसी तरह से थायराइड भी बहुत कॉमनली पाया जाता है, उसकी दवाइयाँ भी ली जाती हैं. तो ये थायराइड क्या है, कहाँ पर होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या क्या कार्य इसके होते हैं, ये हम पहले जानना चाहेंगे.
1: जी नमस्कार. तो थायराइड जो है एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो गले के मध्य में स्थित होती है, जो आपका एडम्स एप्पल बोलते हैं उसके जस्ट नीचे इसका स्थान होता है. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में. पहली बात तो ये है कि अपने ये मेटाबॉलिज्म जो अपना होता है शरीर में, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, तो उस मेटाबॉलिज्म को ये इफेक्ट करती है. दूसरी बात आपके जो माइंड का है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहती है. हार्ट का फंक्शन है उसमें भी इफेक्ट करती है ये. बाकी आपका स्किन फंक्शन है, मूड चेंजेस हैं, रिप्रोडक्शन है, इस फंक्शन इनमें भी इसका काफी योगदान रहता है.
0: अच्छा, मतलब शरीर के कई सारी अंगों में थायराइड ग्रंथि जो है वो, और कई सारे जो कार्यक्रम होते हैं शरीर में, कई सारी चीजें होती है उनमें थायराइड का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंक्शन होता है.
1: जी, क्योंकि क्या है ना कि ये बेसिकली वही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है.
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: इसका हर चीजों में कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा ही.
0: जी बिल्कुल. तो जब हम सामान्यतः कहते हैं कि थायराइड बढ़ गया है या थायराइड की बीमारी है और उसके लिए जो दवाइयां खाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मतलब किस तरह से पता चलता है कि थायराइड की बीमारी है और उसके क्या क्या लक्षण.

0: पाए जाते हैं।
1: तो थायराइड बेसिकली यदि अपन बीमारी की बात करें तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा जिसमें थायराइड हार्मोन कम मिलेगा, और दूसरी कंडीशन होगी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक मिलेगी।
0: अच्छा
1: दोनों में सिम्टम जो होंगे अलग अलग रहेंगे।
0: जी
1: जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो थायराइड लेवल कम है तो उसमें
0: हेलो,
1: जो जो
0: एक श्रोता फोन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर
1: जी
0: लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
0: नमस्कार।
2: थायराइड अपने थ्रोट में सिचुएटेड है तो उसकी वजह से अपने को स्पीच में बोलने में तकलीफ होती है क्या उसके वजह से?
1: नहीं देखिए क्या होता है, थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अपने जो वॉइस जो नर्व होती है उसके जस्ट आगे लोकेटेड होता है, तो उसमें बोलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि इसमें कैंसर हुआ और यदि कैंसर की वजह से जो नर्व है जो थायराइड के पीछे जो नर्व है यदि उसमें कैंसर पहुंच गया, उसमें दबाव उत्पन्न किया, तो फिर आपको बोलने में दिक्कतें महसूस होगी। अदरवाइज नॉर्मल थायराइड यदि रहेगा, यदि उसमें कैंसर नहीं है, नॉर्मल थायराइड है, तो उसमें फिर बोलने में दिक्कतें नहीं रहती हैं जनरली।
0: जी बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो,
3: हेलो।
0: हाँ नमस्कार,
3: हाँ मैम, मी मीनू बोलती है।
0: बोलिए।
3: आणि मॅम, मला डॉक्टरांना हा प्रश्न विचारायचा होता की थायरॉइडचा आपल्या पिरियड्सवर काही परिणाम होतो का, आपल्या पोटावर काही परिणाम होतो का? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे थायरॉइड जे पत्तागोबी फुलगोबी वगैरे हे सगळं खाता येते का? आणि माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की माझं जे थायरॉइड आहे ते 9.5 आहे, पहिले 100 होतं, मग मी गोळ्या सुरू केल्या, 9.5 आहे, तर काही घाबरण्याचं कारण आहे का?
1: तो पहला जो अपन प्रश्न है आपका जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो
0: जी
1: पीरियड्स में क्या होता है कि यदि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब थायराइड हार्मोन कम है तो उनको पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, मतलब मीनोरेजिया होता है ज़्यादातर ऐसे कंडीशंस में। लेकिन यदि उसी उस अपोजिट कंडीशन में देखा जाए तो यदि हाइपरथायरॉयडिज्म है मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें पीरियड्स कम होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज़ों में डिफरेंसेज हैं और दोनों में पीरियड्स में चेंजेस आते हैं। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है खाने की बात में जो पत्ता गोभी वगैरह हैं, तो उसमें ये पाया गया है कि जो ये जो फल हैं मतलब सब्जियां हैं सब्जियां
0: सब्जी
1: हैं उससे क्या होता है कि थायराइड का जो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है यदि आप उसको रॉ खा रहे हैं, मतलब उसको पका के नहीं खा रहे हैं। तो
0: अच्छा
1: लेकिन यदि आप उसको पका के खाते हैं तो जो गोइटोजेनिक इफेक्ट होता है इन सब्जियों के अंदर वो पकाने से उसका जो है वो कम हो जाता है,
0: अच्छा
1: तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें कच्चा लेंगे जैसे ब्रोकोली है या पत्ता गोभी है या फूल गोभी वगैरह हैं तो उससे आपकी जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनेगा क्योंकि आप डन
0: अच्छा
1: अब्जॉर्प्शन कम होगा यदि आप
0: अच्छा
1: कच्चा लेंगे, तो पकाने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: दवाइयों का जहां तक रोल है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दवाई स्टार्ट करते हैं जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो एक बेसिक लेवल पे अपन जो आपका TSH लेवल है T3 T4 लेवल से उस हिसाब से एक दवाई स्टार्ट करते हैं और एक रेंज में, फिर उसको 4 से 6 हफ्ते बाद फिर असेसमेंट करते हैं क्या उस दवाई से आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल हुआ या नहीं,
0: अच्छा
1: उस हिसाब से फिर हम दवाई को ऊपर नीचे बढ़ाना है या घटाना है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो
0: जी
1: 4 से 6 हफ्ते का गैप हम देते हैं यदि
0: अच्छा
1: एक दवाई शुरू कर रहे हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं ट्रीटमेंट में।
0: बिल्कुल। एक और फोन ले
4: हेलो
0: लेते हैं। हेलो
4: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
4: हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार,
4: मी हंसराज उंगे बोलतो नागपूर वरून। माझा प्रश्न असा आहे की म्हणजे थायरॉइड कॅन्सर जर झाला शरीरामध्ये हा कशामुळे होतो आणि याचे लक्षण काय आहेत आणि याच्या शरीरावर काय इफेक्ट होऊ शकतो?
1: जो थायराइड कैंसर होता है उसमें पहली तो प्राथमिकता देखा जाए तो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, 3:1 का रेशो आता है क्योंकि उसमें फीमेल्स में पाया गया था कि उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी वजह से थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरा यदि हम एज फैक्टर की बात करें तो ये 20 से लेकर 50-60 साल तक होता है। अच्छी बात यह है कि यदि यंग एज में कैंसर हो रहा है तो उसका प्रोग्नोसिस जो उसका ठीक होने की संभावना है वो ज्यादा अच्छी रहती है कम्पेयर टू ओल्ड एजेस में। दूसरी बात जो हम थायराइड हार्मोन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक डिफरेंशियल थायराइड कैंसर है या अनडिफरेंशिएट है, तो जैसे पैपिलरी वैरायटी है या फोलिकुलर वैरायटी है उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो मतलब ठीक होने के चांसेस जो है वो 98% रहते हैं। बाकी उसी तरह से जो अनडिफरेंशियल थायराइड कैंसर है जैसे मेडुलरी कैंसर है या एनाप्लास्टिक वैरायटी जो कैंसर की है उनमें प्रोग्नोसिस पुअर होती है और वो काफी ओल्ड एज में होते हैं, 50-60 की एज में होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज और डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर के किस टाइप का है
0: हाँ।
1: तो प्रोग्नोसिस उस पर डिपेंड करती है।
0: जी बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो
5: हेलो मैडम, हेलो सर,
1: हेलो
0: बोलिए। नमस्कार
5: मैडम, माझा प्रश्न आहे सरांना की वय
0: हेलो हेलो शायद फोन कट चुका है। हम फिर से चाहेंगे कि श्रोता फिर से कॉल करेंगे तब बात करते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि फीमेल्स में, महिलाओं में थायराइड कैंसर ज़्यादा पाया जाता है और

0: क्योंकि हम आ ही गए हैं इस पड़ाव पर कि थायराइड कैंसर की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, ये हमने बताया. तो क्या सभी टाइप्स के लिए, या दो टाइप्स जो आपने बताया हैं, सभी के लिए जो लक्षण होते हैं वो एक से होते हैं या अलग-अलग होते हैं? क्या लक्षण देखे जाते हैं?
1: तो मुख्यतः क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो उनको एक समस्या रहती है, गले में कोई गठान है, और मेनली जो गठान है वो आप जब निगलते हैं तो वो ऊपर नीचे हिलती है।
0: अच्छा.
1: तो सिम्टम्स ये हैं कि पहले तो आप गले में कोई गठान है जो कि पेनलेस है, जो दर्द रहित है और हार्ड है, हार्ड फील हो रही है, और कोई सिम्टम्स इनिशियली प्रोड्यूस नहीं करती, कोई बता पहला सिम्टम कुछ नहीं होता है, छोटी
0: अच्छा
1: गठान रहती है।
0: अच्छा
1: लेकिन जैसे जैसे वो गठान बढ़ती है फिर सिम्टम आना शुरू होते हैं, जैसे आप ये बताए थे, तो वो आवाज़ में चेंजेस आना, या खाने में दिक्कतें होना, या फिर
0: हाँ
1: सांस लेने में दिक्कतें होना, या गले में और कहीं गठाने होना। तो
0: जी
1: ऐसे लक्षण यदि होते हैं तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये थायरॉयड कैंसर हो सकता है।
0: जी जी
1: जैसे बताया मैंने, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता
0: हाँ
1: है, लेकिन कॉमन जरूर फीमेल में होता है, लेकिन यदि मेल में होगा तो रिस्क ज़्यादा रहेगी।
0: अच्छा. इसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे. पहले एक फोन ले लेते हैं. हेलो,
2: नमस्ते मैडम.
0: नमस्ते, बोलिए.
2: माझा हा प्रश्न आहे.
0: हाँ.
2: माझ्या ताईचं वय आहे 47-48 च्या रेंज मध्ये आहे, आणि युट्रस आणि ओरी दोन्ही काढलाय. तिला ऑलरेडी थायरॉइड आहे. तिचं वजन पण जास्त आहे. ती योगा करते, एक्झरसाइज करते, घरचे सगळे काम करते, तरी पण तिचं वजन कमी नाही होत. तर असं का बरं?
1: देखिए, थायराइड जो है वो सिर्फ वजन का एक ये है कि यदि, मैंने आपको भी बताया था कि हाइपर थायरॉयडिज्म में वजन बढ़ता कम होता है और हाइपो में बढ़ता है।
0: जी
1: तो यदि आपका थायरॉयड हार्मोन आपने दवाइयों से यदि आपने कंट्रोल कर रखा है, एक नॉर्मल रेंज में आपका थायरॉयड फंक्शन टेस्ट है,
0: जी
1: तो यदि उसके वजह से भी यदि वजन, उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है, तो उसके अदर कारण हो सकते हैं। केवल थायरॉयड की वजह से वजन बढ़ना ये एक लेवल तक रहता है, लेकिन यदि नॉर्मल आपका वैल्यूज हैं तो आपको अदर कारण तलाशने चाहिए कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, खाने
0: जी
1: पीने से या कुछ
0: जी
1: और दिक्कतों से बढ़ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा।
0: थायराइड रेंज की जब हम बात करते हैं, जैसे शुगर या बीपी का एक रेंज हम सभी को पता है, तो थायराइड की क्या नॉर्मल रेंज होती है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में हमें अपने थायराइड को रखना है?
1: देखिए, उसमें थायराइड में हम जब टेस्ट करवाते हैं उसमें मेन तीन टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। तो जो हम इसमें तीनों में से जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है उसमें TSH लेवल हम लोग देखते हैं। TSH लेवल यदि कम है तो इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन बॉडी में ज्यादा है,
0: अच्छा.
1: इसका पॉजिटिव रिलेशन रहता है।
0: हाँ.
1: TSH लेवल यदि बढ़ गया है तो थायराइड हार्मोन कम है। तो जो नॉर्मल TSH अपन मानते हैं वो 3 to 5 के रेंज मानते हैं।
0: अच्छा.
1: तो इसके ऊपर यदि थायराइड TSH बढ़ा है तो मतलब बॉडी में थायराइड हार्मोन कमी है, तो फिर हमें गोली चालू करनी पड़ती है थायराइड हार्मोन के लिए। यदि इससे कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है,
0: अच्छा
1: तो फिर हमें ऐसी दवाई चालू करनी पड़ती है जो थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करे।
0: अच्छा अच्छा
1: तो उस हिसाब से, उस रेंज के हिसाब से अपन डिसाइड
0: जी
1: करते हैं।
0: बिल्कुल. एक और फोन लेते हैं. हेलो.
3: हेलो डॉक्टर, मी मनीषा बोलत आहे नागपूरवरून. मला विचारायचं होतं की थायरॉइड मुळे बारीक पण होतं आणि लठ्ठ पण होतं का? मग ते थायरॉइडचे प्रकार आहेत का, बारीक होण्याचा वगैरे, काही हा प्रश्न होता.
0: हमने अभी जो बात की कि थायराइड की वजह से वजन पे जो फर्क पड़ता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो ये किन कंडीशंस में होता है?
1: नहीं, देखिए, वही मैंने बताया ना कि आपका यदि थायराइड हार्मोन यदि आपने जो ले रहे हैं, यदि आपका थायराइड हार्मोन कम है तो वजन बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो वजन कम होगा।
0: जी.
1: तो यदि आपका नॉर्मल थायराइड रेंज में है, जैसे मैंने आपको TSH और T3 और T4 लेवल यदि आपका नॉर्मल रेंज में है, और यदि वजन आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके अदर कारण हो सकते हैं। थायराइड यदि है, यदि कम है तो फिर आपको बढ़ेगा। तो उसको यदि आप नॉर्मली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, और यदि वो असेसमेंट करके फिर आपको बता सकता है कि एक्चुअल उसका रीजन क्या है।
0: जी. एक और श्रोता है फोन पे. हेलो.
4: हेलो,
0: नमस्कार.
4: नमस्कार, मी सुहास बोलतो नागपूरहून.
0: बोला.
4: माझ्या मिसेसला 10 वर्ष झालं थायरॉइड आहे. माझी ट्रान्सफर सिल्वासाला झाली होती दमणकडे. तिकडे ना हार्ड वॉटर आहे, त्यामुळे थायरॉइड झालं का हा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरं आहे की तिला थायरॉक्स गोळ्या सुरू आहे 125 mg. तर काय केल्याने गोळ्याचा डोस कमी होऊ शकेल?
1: देखिए, एक चीज है कि जो थायराइड जो मोस्टली पाया जाता है वो आयोडीन जो डेफिशिएंट डाइट होती है, मतलब जिसमें आयोडीन कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब चूंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह जो हैं वो संस्थाएं ऐसी हैं कि जो आजकल जो आप नमक यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आयोडीन रहता है, तो नॉर्मल जो आयोडीन रेंज है 150 माइक्रोग्राम्स के अराउंड देते हैं जो एडल्ट्स में अपन यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह में बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप ये मान चलें कि वो दवाइयाँ यदि आप कम हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन रेंज रहता है। और मैंने वही बताया कि यदि आपको फीचर्स आते हैं कि यदि आपको दवाइयां असर नहीं कर रही हैं या दवाइयों का डोज अपने को इंक्रीज करनी है, तो 4-6 हफ्ते बाद एक बार टेस्ट करवा सकते हैं। और यदि आपका वो जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आती हैं, जैसे वो कम होता है या ज्यादा होता है, उस हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाइयां चेंज

0: करता है।
1: जी
0: बंद होने का ऐसा मुश्किल है क्योंकि यदि आपने आपको एक बार थायराइड की दवाई चालू हो गई है तो मोस्टली ऐसे कंडीशंस में बंद नहीं होता है,
1: जी, तो
0: उसको देना
1: मतलब
0: ही
1: एक बार
0: पड़ता
1: दवाई अगर आपने शुरू की है तो आपको वो
0: है। लेनी
1: लाइफ लॉन्ग
0: पड़ेगी,
1: लेनी
0: लेनी
1: है,
0: पड़ेगी।
1: और जिस तरह से डायबिटीज या बीपी ये गोलियों से कंट्रोल किया जाता है उसी तरह से ये चीजें
0: हाँ
1: कंट्रोल में रहेगी।
0: बीपी, हाँ ये जरूर रहता है। और थायराइड गोली का एक चीज ये रहती है कि थायराइड गोली आप हमेशा एम्प्टी स्टमक लें,
1: हाँ
0: सुबह लें, जब उठते हैं आप सुबह उठते हैं तभी आपको लेना है, और उसके साथ में 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है।
1: अच्छा
0: क्या होता है कि हमने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं कि जो दवाई ले लेते हैं और उसके साथ में आयरन की, कैल्शियम की गोलियां साथ में ले लेते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आप दवाइयां साथ में, यदि 2-3 दवाइयां साथ मिला के लेते हैं तो जो थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन है, गोलियों का एब्जॉर्प्शन जो है
1: अच्छा
0: वो घट जाता है,
1: हाँ
0: और पेशेंट को लगता है कि यार हम दवाई ले रहे हैं फिर भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है कि आप हमेशा उसको खाली पेट लें और कम से कम 1 घंटे तक कुछ ना खाएं पिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है, हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार
2: नमस्कार मैम, नागपुर से बोल रहे हैं।
1: जी।
2: मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि 45 एज में मेनोपॉजल कंडीशंस में थायराइड की कोई इश्यू नहीं है, पर आ सकता वर्किंग वुमन अगर
1: हो सकता है क्या मेनोपॉजल विमेन के लिए?
0: नहीं, तो देखिए थायराइड ग्लैंड्स जो है वो आपका फंक्शन करेगा, लाइफ लॉन्ग फंक्शन करेगा, उसमें
1: जी
0: ऐसा एज फैक्टर को कोई निरेशन नहीं है।
1: अच्छा
0: जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो मैंने आपको बताया है कि वो रिस्क ऑफ कैंसर 20 साल से लेकर 50-60 साल तक हो सकता है, यदि कैंसर के बारे में हम बात करते हैं। तो किसी भी एज ग्रुप में कैंसर हो सकता है, लेकिन थायराइड का और एज का ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं कि इस एज ग्रुप
1: नहीं
0: होगा तो ही कैंसर होगा। इस एज ग्रुप में यदि कोई होता है तो हो सकता है कैंसर।
1: जी बिल्कुल। और हम एक बार फिर अपने विषय की तरफ चलते हैं, कैंसर, थायराइड का कैंसर जो है वो क्यों होता है? क्या जिन्हें थायराइड की बीमारी है उन्हें थायराइड कैंसर होने के चांसेस है कितने हैं? और ये भी हम जानना चाहेंगे। उससे पहले हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल, ऑटोमोटिव स्क्वायर, नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज हम बातचीत कर रहे हैं थायराइड कैंसर के बारे में। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंह। आप अपने सवाल पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फोन नंबर्स हैं 6940067, 2560101 और 2529266071। ये नागपुर का STD कोड डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे कि थायराइड कैंसर क्यों होता है, जिन्हें थायराइड की बीमारी है क्या उन्हें थायराइड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं?
0: तो बेसिकली क्या है कि कारण बहुत सारे रहते हैं, कुछ कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो
1: जी
0: मुख्य कारण अपन देखते हैं तो उसमें एक रेडिएशन एक्सपोजर रहता है जिससे कारण पेपिली कैंसर थायराइड बढ़ता है। जो आयोडीन डिफिशियंट डाइट लेते हैं जिसमें
1: जी
0: आयोडीन की मात्रा कम रहती है, उन कंडीशंस में भी हमें फोलिकुलर कैंसर ऑफ थायराइड मिलता है।
1: अच्छा
0: कुछ कंडीशन है जो जेनेटिक होती हैं, जैसे आपका रेट म्यूटेशंस हैं जो जो जेनेटिक के जो आपके परिवार
1: अच्छा
0: आनुवंशिकी चलती
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: कुछ में फैमिलियल भी होता है, मतलब
1: हाँ
0: परिवार में यदि आपके कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको कैंसर की संभावना ज्यादा हो सकती है।
1: जी
0: जहां तक लंबे समय तक हाइपोथायरॉयड रहने का सवाल है तो उसमें कैंसर ऐसा रिस्क नहीं रहता, वो एवरेस्ट में ही रहता है।
1: अच्छा
0: लेकिन यदि लंबे समय तक गॉइटर है या फिर ऐसा अनप्रोवोकेट है तो उस कंडीशन में कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है,
1: अच्छा
0: लेकिन उसका कोई अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पर यह माना जाता है कि यदि लंबे
1: जी
0: समय तक कोई भी थायरॉयड में गठान है तो उसमें चांसेस रिस्क कैंसर के हो सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और अभी आपने कहा कि महिलाओं में प्रमाण ज्यादा होता है लेकिन रिस्क कम
0: कम
1: होती
0: होता
1: है,
0: है।
1: तो क्या आप इसे थोड़ा विस्तृत तरह से बता पाएंगे किस
0: देखिए
1: तरह?
0: फीमेल में जो मैंने अभी बताया कि एक जैसे हार्मोन जो रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो बेसिकली फीमेल्स में मोस्टली पाया ज्यादा रहता है,
1: जी
0: तो वो कंडीशंस में उनको रिस्क ज्यादा रहती है क्योंकि थायराइड में उनका स्टिमुलेट करते हैं, एंड इसलिए मैंने बताया कि 3:1 का रेशियो है कैंसर का। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होते हैं वो डिफरेंशियल वैरायटी के होते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है जैसे सर्जरी हमने करी और सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद हम रेडियोडियन थेरेपी देते हैं डिफरेंशियल केसेस में, तो उससे वो उनका रिकवरी रेट नियरली आप मान चलिए कि 97-100% वो ठीक हो जाती हैं।
1: अच्छा
0: वहीं अपोजिट यदि हम देखें मेल्स कंडीशंस में, उनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है थायराइड कैंसर, यदि उनको होता कम है लेकिन उनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उम्र यदि 55 साल से कम की लेडीज को या फिर आदमियों को हुआ है कैंसर
1: जी
0: तो उनमें रिस्क कम है,
1: अच्छा
0: वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। वही
1: अच्छा
0: अपोजिट हम 55 साल से ऊपर को देखते हैं तो उनमें रिस्क ज्यादा रहती है,
1: बिल्कुल
0: कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं उनको।
1: अच्छा। एक और श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
1: नमस्कार
3: नमस्कार
1: बोलिए
3: मैडम, मैं सौंसर से संजीव कुमार बोल रहा हूँ।
1: बोलिए।
3: मैं 5 साल से 50 mg की थायरोक्सिन ले रहा हूँ, तो क्या पैरों में इससे मसल क्रैम्प्स होते हैं क्या?
0: तो जो थायराइड होता है, जो दवाइयां होती हैं, यदि आप नहीं लेते हैं यदि आपका लेवल नॉर्मल है तो उससे

0: नहीं होंगे। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कम है या ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको क्रैम्स आना स्टार्ट होंगे। तो आप जो दवाइयां ले रहे हैं, पहली बार एक बार आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें कि क्या वो डोज सही है। कभी कभी हम जो दवाइयां ले रहे हैं 50 mg यदि आप MCG जो ले रहे हैं, हो सकता है उसका इफेक्ट ना हो रहा हो या फिर वो कम है। तो यदि आप उसको टेस्ट करवाएंगे, दोबारा थायराइड टेस्ट करवाएंगे और उसमें यदि कुछ अबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसको दवाइयां बदलनी पड़ती हैं। तो मैंने वही बताया कि यदि हाइपर होगा या हाइपो होगा, थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्रैम्स जरूर मिल सकते हैं। यदि नॉर्मल रेंज रहता है तो उसके वजह से नहीं होगा जनरली।
1: जी, एक और श्रोता है फोन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: बोला।
2: मी अंजलि बोलते है। माझा प्रश्न हा होता की माझं वय आहे 51 आणि माझं TSH लेवल आहे 25 आणि तर मला हा कुठला थायरॉइड आहे आणि माझं वजन आपोआप कमी होत आहे, तर मला कुठला थायरॉइड आहे आणि मला काय काळजी घ्यायला पाहिजे? माझं वजन आता 58 आहे।
0: नहीं, ये अपोजिट चीजें हैं, क्योंकि आपका जो TSH लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है आप हाइपो में हो, थायराइड हार्मोन आपका कम है और वजन भी आपका कम हो रहा है, तो उसको आपको दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आप मिलो और वही आपका पूरा असेसमेंट करके फिर अच्छे से आपको बता पाएगा।
1: बिल्कुल। हम बातचीत कर रहे थे कि जो कैंसर है उसे किस तरह से हम जांच सकते हैं, अगर कोई अपने पास आता है कुछ लक्षण लेकर आता है तो किस तरह की जांच की जाती है ताकि पता चले कि ये थायराइड का कैंसर है।
0: तो सर्वप्रथम हम लोग जो करवाते हैं वो थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट से अपन ये कराते हैं कि ये जो गठान है वो किस प्रकार की है, क्या ये ऐसा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की गठान है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। तो हम TSH लेवल और जो T3-T4 लेवल है वो असेसमेंट करते हैं पहला। दूसरी बात हम करवाते हैं सोनोग्राफी। गैलिक सोनोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि जो गठान है वो क्या पानी वाली गठान है, क्या उसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट है या उसको वास्कुलरिटी है। तो कुछ फीचर ऐसे मिलते हैं उस कंडीशन में जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये कैंसर हो सकती है। और यदि हमें ऐसा लगता है तो फिर हम एक FNAC टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम सुई से जो गठान है उससे हम थोड़ा टिश्यूज पानी निकालते हैं और उसको फिर चेक करते हैं कि क्या ये कैंसर है और यदि कैंसर है तो वो किस टाइप का है। और कैंसर मैंने बताया ना, कैंसर के टाइप के आधार पर फिर हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम इनको करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोप्सी और FNAC आपने बताया, क्या ये एक ही चीज होती है या अलग अलग चीजें होती है?
0: नॉर्मली FNAC जो होती है साइटोलॉजी है, तो उसमें क्या होता है जब हम एक नीडल यूज करते हैं, वो पतली नीडल यूज करते हैं, तो उससे जो निकालते हैं वो पानी निकालते हैं, सेल्स देखते हैं उसके अंदर। बायोप्सी में हम टिश्यू देखते हैं। तो बायोप्सी की जो नीडल होती है मोटी होती है और वो जो बड़ा चंक निकालती है टिश्यू निकालती है। नॉर्मली थायराइड केसेस में हम लोग FNAC कराते हैं। उसका मेन कारण यह है कि यदि हम बायोप्सी जाते हैं, निडल लाते हैं, तो क्योंकि वास्कुलर एरिया है थायराइड का, तो निडल यदि मोटी यूज करेंगे तो ब्लीडिंग या हिमाटोमा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हालांकि FNAC जो है वो अच्छी है, इफेक्टिव है और गाइडलाइंस के हिसाब से FNAC सफिशियंट रहती है थायराइड केसेस के लिए।
1: अच्छा, तो उसमें फिर बायोप्सी करवाने की जरूरत भी नहीं।
0: FNAC में सेल्स मिल गए आपको, उसमें मिल जाएंगे और उस हिसाब से फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं, अच्छे पतले से डायग्नोस कर लेते हैं।
1: एक और श्रोता से बात करेंगे। हेलो
3: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि थायराइड के कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या और उसका लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन है क्या? इज इट ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और व्हाट?
0: नहीं, लाइफस्टाइल का नहीं रहता है थायराइड। बेसिकली आप जो थायराइड है वो बेसिकली जो थायराइड की प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि ये जरूर है कि कुछ केसेस जो देखा जाता है, जो मोटे होते हैं जिनका ज्यादा होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा रहता है इसमें। दूसरी चीज है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि आपका एरिया यदि आप खाना कम खा रहे हैं या फिर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें जो गाइटोजेनिक इफेक्ट है, जैसे आपने अभी बताया था खाने पीने के बारे में, जो ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं, उन कंडीशंस में थायराइड का जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिये और ये ड्रिंक्स वगैरह जो है वो अवॉइड करें।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से साइटोलॉजी टेस्ट के बाद अगर पता चल जाता है कि किस तरह का कैंसर है तो फिर ट्रीटमेंट की क्या क्या पद्धतियां हैं, क्या ऑपरेशन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है?
0: तो थायराइड कैंसर, एक मैंने बताया ना, थायराइड कैंसर दो तरह से बेसिकली डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड में। और डिफरेंशिएटेड में अच्छा बात यह है कि हम उसको ठीक अच्छा से कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ट्रीटमेंट में, उसमें पहला करते हैं सर्जरी।
1: अच्छा।
0: सर्जरी भी डिपेंड करती है कि थायराइड का जो नोड्यूल है वो कितना बड़ा है और किस टाइप का है। तो छोटे नोड्यूल होंगे, यदि 1 cm से छोटे हैं तो उसमें भी वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी रहती है। 1-4 cm की जो आजकल गाइडलाइंस आई है उसमें हम सिर्फ थायराइड का एक पार्ट निकालते हैं जिसको हेमी बोलते हैं। लेकिन यदि 4 cm ज्यादा नोड्यूल हैं, बड़े हैं या फिर अंदर और 2-3 नोड्यूल्स मिल रहे हैं या थायराइड से बाहर चला गया है ट्यूमर, तो उस कंडीशन में हम लोग पूरा थायराइड निकाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: और पूरा थायराइड निकालने के बाद हम उसको 4-6 हफ्ते तक कोई दवाई नहीं देते थायराइड की।
1: अच्छा।
0: 4-6 हफ्ते बाद हम उनको एक थेरेपी होती है, रेडियोडन थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क, जैसे इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क डॉक्टर असेसमेंट करता है। और उसके बाद रेडियोडन थेरेपी देते हैं।

0: थेरेपी वो ऐसे रहता है कि वो एक गोली या फिर लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको हम पेशेंट को पिलाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसके बॉडी में कुछ रेसिडुअल कुछ बचा है या नहीं,
1: अच्छा
0: और फिर उसको देने के बाद पेशेंट नियरली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है।
1: बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ हेलो मैडम।
1: हाँ नमस्कार,
2: हाँ नमस्कार मैडम, मैं सुखदेव शाहरे बोल दो
1: बोल
2: बता रहे हो।
1: बोला।
2: कैंसर हो चुका है या फिर कौन सी काट दी है वाला के लिए?
1: कैंसर ना होने पाए इसके लिए क्या किया जाए?
0: देखिए, कैंसर मैंने आपको भाई बताया कि एक तो जेनेटिक चीज़ें हैं, जो डाइट है वो यदि मेंटेन आप रखें, और फैमिलियल चीज़ें और जेनेटिक चीज़ें आप उसको चेंज नहीं कर
1: जी
0: सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं,
1: हाँ
0: तो ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, मेनली अभी इस कंडीशन में थायराइड कैंसर यदि हो रहा है तो डायग्नोज यदि जल्दी हो जाए तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है और आपकी लाइफ पूरी
1: जी
0: प्रॉपर हो सकती है।
1: जी
0: तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस का, कि
1: हाँ
0: डायग्नोज जल्दी हो गया, ट्रीटमेंट जैसे ही से हो गया, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
1: बिल्कुल। आप इतनी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई पेशेंट, कई तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं, तो कॉमन मिथ्स क्या देखी जाती हैं? क्योंकि अगर उसके बारे में हम पेशेंट्स को बताएं तो उनमें जागरूकता ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: मेन समस्या ये आती है कि कोई भी गठान गले में रहती है तो बहुत से लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार
1: जी
0: ऐसे ही है, नॉर्मल है, बहुत दिनों से है। पर कोई भी गठान यदि बहुत दिनों से है, बाद में कैंसर नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं है।
1: हाँ
0: तो इसीलिए एक बार जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गठान रहेगी और उसको मलना स्टार्ट कर देते हैं,
1: हाँ
0: रगड़ना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि कोई ये है, इसको गला देंगे, दबा दबा के
1: हाँ
0: गला देंगे, या फिर कुछ हम ऐसी दवाई यूज करें आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जिससे वो गल जाए। तो जनरली ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि वो ट्यूमर कभी कभी रैप्चर हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन यदि होता है वो भी फैल जाता है। तो कभी भी ऐसे रगड़ने वाली और या फिर कोई भी ट्यूब लगाना, जो भी क्वैक्स दे रहे हैं, वो ऐसी चीज़ यूज़ ना करें। एक बार उसका स्कैन या फिर जो जो भी कंसर्न डॉक्टर्स रहते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार जरूर संपर्क करें और उसके
1: जी
0: हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट लें।
1: जी और पोस्ट ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी हो गई, बाकी सारी दवाइयाँ हमने ले ली, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को और उनके घर वालों को याद रखनी है, किस तरह से हम आगे बढ़े?
0: तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम, चूंकि बॉडी में यदि थायराइड हमने पूरा निकाल दिया है, तो हमें उसको थायराइड सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है,
1: जी।
0: मतलब थायराइड गोलियां खानी पड़ती हैं। और हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि ये आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड नहीं है।
1: नहीं है।
0: तो
1: हाँ
0: जब नहीं है तो आपको एक ये गोली आपको रेगुलरली यूज़ करनी है, जैसे आप बीपी की यूज़ करते हैं,
1: जी
0: और उसको थोड़ा हाई डोज में यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क फैक्टर्स हम उसको दवाई को टाइटरेट करते हैं कि कितना डोज इनको देना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से उसको लाइफ लॉन्ग अपने को दवाई लेनी है, कभी छोड़नी नहीं है। कुछ पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं दवाई, क्योंकि डोज थोड़ा ज़्यादा रहती है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमें TSH लेवल जो मैंने बताया उसको
1: जी
0: हमें कम रखना पड़ता है। तो कुछ पेशेंट को लगता है कि ऐसे फ्लशेज आते हैं या थोड़ा हार्ट में कुछ ऐसे इशूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर जरूर संपर्क कर लें। पर लेकिन ये है कि दवाइयाँ छोड़ें ना,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: दवाई यदि आप लेते रहेंगे और पूरा दवाई लेंगे तो आपको जो ये रिस्क रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस हैं वो बहुत
1: हाँ
0: कम रहेंगे इस
1: बिल्कुल।
0: वाला।
1: वही मेरा अगला सवाल था कि रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं?
0: डिफ्रेंशिएटेड वैरायटी जो मैंने बताया है ना,
1: हाँ
0: यदि आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया है तो आपको रिकरेंस 1-2% होगा, जैसे
1: आज
0: 98% आपका क्योर रेट्स हो जाता है। रिकरेंस हर कैंसर में होता है, तो इसमें भी रहता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो इसीलिए आपको फॉलोअप करवाना पड़ता है। फॉलोअप हम लोग जनरली कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, नेक की सिम्टम्स के आधार पे हम लोग SCT MRI भी करवाते हैं।
1: जी
0: तो आप हर 3 महीने 6 महीने में एक बार आप डॉक्टर से संपर्क करें इनिशियल स्टेजेस में, बाद में फिर 6 से 12 महीने में आप एक बार दिखा सकते हैं, बाद इतना जल्दी जल्दी आने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें।
1: जी जी जी बिल्कुल। जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि थायराइड जो ग्लैंड है, कभी आधी निकाली जाती है, कभी पूरी निकाल दी जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद क्या ऐसा पाया जाता है कि थायराइड का कैंसर तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन कहीं और पेशेंट को कैंसर पता चल रहा है कि वहाँ पे है, तो इसके क्या चांसेस होते हैं?
0: नहीं, जैसे थायराइड में एक जो वैरायटी जो कैंसर है, डिफरेंशियल वैरायटी जिसको मेडुलरी थायराइड कैंसर बोलते हैं, वो उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, रेट म्यूटेशन जीन्स होते हैं, उसमें मल्टीपल और अदर ऑर्गन्स में भी कैंसर हो सकता है। तो वो एक कैंसर जो ऐसा है वो अलग कैंसर करा सकता है। बाकी जो कैंसर होते हैं जो थायराइड की वजह से अलग कैंसर होगा ऐसा नहीं है। हालांकि जिनको कैंसर प्रिडिस्पोजिशन होता है, जिसमें कैंसर होता है तो उनमें अदर कैंसर रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे सामान्य पब्लिक के मुकाबले।
1: जी बिल्कुल। और ये जो ऑपरेशन हम करते हैं, क्या वो दूरबीन से या रोबोटिक, आजकल नया नया नया चलन है, उस तरह से की जाती है या किस तरह से सर्जरी की जाती है?
0: तो उसमें डिपेंड करता है साइज पे।
1: हाँ
0: क्या है कि यदि हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो साइज यदि बहुत बड़ा होगा तो उस वो निकलेगा नहीं, उस पोर से, मतलब वो चेन जो हम बनाते हैं, तो जो बहुत छोटे ट्यूमर्स होते हैं, अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं और डिफरेंशियल वैरायटी ट्यूमर्स हैं, उस कंडीशन

0: में जरूर आजकल रोबोटिक यूज करते हैं, लैप्रोस्कोपिक कम, एंडोस्कोपिक जिसको बोलते हैं वो कम यूज होता है, रोबोटिक कर रहे हैं आजकल, लेकिन साइज क्राइटेरिया उसमें रहता है, छोटा था लेस देन 2 सेंटीमीटर का राउंड यदि ट्यूमर रहता है तो वो अच्छे से निकल जाता है। बड़े ट्यूमर होंगे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8-10 सेंटीमीटर ट्यूमर्स होंगे जनरली वो पोर्ट से निकलते नहीं, उसमें आपको चीरा देना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम प्रेफर ये करते हैं कि हम ओपन सर्जरीज में जाएं बसरते रोबोटिक के।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि ये गले के पास या गले में सर्जरी होती होगी तो क्या लाइफ लॉन्ग कोई ट्यूब रखना है या ऐसी कुछ चीज़ें होती है?
0: नहीं, एक्चुअली क्या है ना यदि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वॉइस की, तो यदि यदि अच्छी जगह से नहीं किया गया या फिर कोई नर्व, जैसे नर्व जो होती है रिकरलेंजर नर्व होती है जो बोलने में इफेक्ट करती हैं, तो यदि वो डैमेज होती हैं, यदि दोनों तरफ डैमेज हुई तो फिर ट्यूब जलेगा, वो फिर बोल नहीं पाएंगे। एक साइड में यदि डैमेज होती है तो जनरली हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। कुछ लोग जो गाने वाले होते हैं उन कंडीशंस में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटर्नल लेंजल ब्रांच नर्व की होती है उसको भी देख के उसको प्रिजर्व करना रहता है, अदरवाइज वो हाई पिच नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जो प्रोफेशनलिज्म जो प्रोफेशनल होते हैं उनमें हमें नर्व सेंसेशन नर्व को टेस्ट करके नर्व देख के फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। और चेंजेस कुछ जो आपके प्रोफेशंस हैं जैसे मैंने बताया गाने का, तो यदि ऐसे कंडीशंस में यदि पेशेंट ऑपरेट करवाते हैं उसमें नर्व प्रिजर्व नहीं की गई तो उसमें फिर उसकी जो कैरियर पॉइंट है वो दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं आप सुन रहे थे एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला विजय वैद्य और सतीश कोडमलवार से, प्रस्तुति सहयोग मिला मोनाली शेंडे से। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता रसपुरे। डॉक्टर भास्कर सिंह के साथ मैं कल्याणी अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, नमस्कार। हेलो डॉक्टर, हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे।

0: से थे।
1: जी जी जी मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान

0: जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
1: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: जी मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
1: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का

0: विषय है, भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।

0: घूमते घूमते थके जोश के पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
3: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16%,

0: और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत

0: किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
1: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: 558 किलोहर्ट्स वर श्रोते हो अपन ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। आमचे कार्यक्रम प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील आपण ऐकू शकता। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आता ऐकूया आदित्य खांडवे यांनी गायलेला राग गौड मल्हार।

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है, उस सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू

0: मुद्दे पर अपनाधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज। आकाशवाणीच हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुळकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। रेल्वेसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेकरता रेलभूमी हे नवीन पोर्टल सुरू करण्याची रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा। असंसर्गजन्य रोग हे बालपणापासूनच झपाट्यानं वाढत असून त्यासंदर्भात मीडियामध्ये जनजागृती आवश्यक। पश्चिम क्षेत्राच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांचं प्रतिपादन। महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 सुधारणा करायला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी। आणि पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीनं नागपूर इथं आयोजित भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेसाठी मनुष्यबळाची सज्जता या संदर्भात कार्यशाळेचं आयोजन। आता सविस्तर बातम्या। रेल्वेच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेचं व्यवस्थापन व्हावं या उद्देशातून रेलभूमी या नावानं पोर्टल सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली। नवी दिल्ली इथं भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी हाती घेतलेल्या सुधारणांबाबत ते आज पत्रकारांशी बोलत होते। रेल्वे मंत्रालयानं बांधकामासह अन्य क्षेत्रात सुधारणा केल्या आहे। आता खतांची वाहतूकही रेल्वे कंटेनरमधून केली जाऊ शकते। विद्युत निर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय एश राखेची वाहतूक आता कंटेनरमधून केली जाईल असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं।
2: अगर हम फ्लाई एश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई एश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: राखेच्या वाहतुकीसाठी एकीकृत परवाना प्रणालीची घोषणाही अश्विनी वैष्णव यांनी केली। ही प्रणाली जास्तीत जास्त 2 वर्षात सर्व प्रकल्पांमध्ये लागू केली जाईल असं ते म्हणाले। युनिसेफ, पत्रसूचना कार्यालय आणि एम्स नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीसाठी बालपणातील असंसर्गजन्य रोगविषयी क्षमता बांधणी कार्यशाळेचं आयोजन आज एम्स नागपूर इथं करण्यात आलं. यावेळी बोलताना पश्चिम क्षेत्राच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी सांगितलं की असंसर्गजन्य रोग हे बालपणापासूनच झपाट्यानं वाढत असून त्यासंदर्भात मीडियामध्ये जनजागृती व्हावी.

0: भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेसाठी मनुष्यबळाची सज्जता या कार्यशाळेचं आयोजन पत्र सूचना कार्यालयानं नागपुरात केलं होतं. जागतिक ऑरेंज अर्थव्यवस्थेत 3% योगदान असलेल्या भारताचं पुढच्या 10 वर्षात 12-15% योगदान देण्याचं उद्दिष्ट असून त्या दिशेनं प्रयत्नशील असल्याचं प्रतिपादन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य डॉ आशिष कुलकर्णी यांनी यावेळी केलं. हवामान. येत्या 2 दिवसात कोकणात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. कर्जमुक्ती योजनेचे निकष शिथिल केल्यानं अतिरिक्त 23 लाख शेतकऱ्यांना होणार फायदा. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्वावर विकास करायला मंत्रिमंडळाची मान्यता. राज्यातल्या धरणांमध्ये 44% पाणीसाठा. 12 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या 75% कमी पाऊस. मोशी दुर्घटना प्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल. महापालिकेच्या अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस. आणि गुरुवारपासून पंढरपुरात 24 तास दर्शन सुविधा. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स अर्थात 558 किलोहर्ट्स वर. यानंतरचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण ऐकू शकणार आहात 7:15.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग

0: के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का

0: मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण